महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, आईने के सामने खड़े होकर हम खुद को कितनी देर तक निहारते हैं, अपनी चमकती त्वचा, अपने काले बाल और अपनी इस जवानी पर हमें कितना गुमान होता है। हमें लगता है कि यह खूबसूरती, यह ताकत और यह जोश हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम इसी जोबन के नशे में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन कबीर साहब आज प्रकृति के एक सुंदर लेकिन कड़वे सच के साथ हमारे सामने खड़े हैं। वे हमें पलाश के उस पेड़ की याद दिला रहे हैं जो वसंत में तो आग की तरह दहकता है, पर फिर उसका क्या हश्र होता है। आइए जानते हैं इस चार दिन की चांदनी का असली चेहरा। कबीर कहा गर्बियो इस जोबन की आस, टेसु फुले दिवस चारी खंकर भये पलास।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल का। ये वतन का राग। यूं तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दबा दिया था, लेकिन भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने आने वाली पीढ़ी के कुछ क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास जरूर जमा दिया था कि सशस्त्र क्रांति से ही भारत की स्वाधीनता संभव है। इसलिए दूसरे स्वतंत्रता संग्राम को खड़ा करने के उद्देश्य से अनेक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए और इसकी विधिवत तैयारी की गई। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने गदर पार्टी के रूप में इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम किया, तो देश के भीतर बंगाल से पंजाब तक के क्रांतिकारी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। देश के भीतर इस उद्देश्य से जुटे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने देश के साथ साथ विदेश में रहते हुए भी भारत की स्वाधीनता हेतु आजीवन प्रयास किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्हीं रास बिहारी बोस के अत्यंत विश्वस्त साथी थे महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल। शचीन्द्रनाथ सान्याल का जन्म सन 1893 को बनारस में हुआ था। उनके पिता हरिनाथ सान्याल अपने सभी पुत्रों को बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यही कारण है कि शचीन्द्रनाथ के बड़े भाई रविन्द्रनाथ सान्याल बनारस षड्यंत्र केस में नजरबंद रहे। छोटे भाई भूपेंद्रनाथ को काकोरी कांड में 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई तो तीसरे भाई जितेंद्रनाथ भी लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह आदि के साथ अभियुक्त थे। दरअसल सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटिश सत्ता के विरोध में उठी लहर ने उस समय के बच्चों और नौजवानों को अत्यधिक प्रेरित किया था। शचीन्द्रनाथ और उनके पूरे परिवार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। यही कारण है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ने काशी में मात्र 15 वर्ष की उम्र में सन 1908 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये संगठन बंगाल के क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। इस समिति का प्रारंभिक स्वरूप व्यायामशाला का था, लेकिन असल में ये नवयुवकों का राष्ट्रवादी संगठन था। ये वो समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा देश गरज उठा था। उधर तिलक जी ने पुरजोर आह्वान कर दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज का नारा जन जन का नारा बन गया था और भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्वाधीनता और स्वराज की प्रबल मांग गूंज उठी थी।

शचीन्द्रनाथ के मन में देश की स्वाधीनता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती होती जा रही थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने बंगाल की यात्रा की। अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ, लेकिन जब रास बिहारी बोस से उनकी भेंट हुई तो जैसे उनकी तलाश पूरी हो गई। इस तरह वो रास बिहारी बोस के अनन्य सहयोगी के रूप में आगे बढ़े। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में शचीन्द्रनाथ भी रास बिहारी बोस के साथ थे। दोनों ने साथ मिलकर संगठन के विस्तार का बीड़ा उठाया था और इसके विस्तार के लिए राजस्थान तक पहुंचे। राजस्थान में पहले से ही एक राष्ट्रवादी संगठन काम कर रहा था, जिसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खड़ा किया था, और तब वे लंदन में रहकर क्रांति गतिविधियों को विस्तार दे रहे थे। राजस्थान में उस

में अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद राव, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट जैसे अनेक क्रांतिकारी सक्रिय थे। शचीन्द्रनाथ ने उन्हें साथ लेकर राजस्थान में संगठन विस्तार के साथ साथ दिल्ली में भी संगठन के विस्तार का कार्य किया। पंजाब के क्रांतिकारियों में गदर पार्टी के लोग अधिक थे। दरअसल गदर पार्टी के हजारों सदस्य जत्थों में अमेरिका और कनाडा से भारत पहुंचे थे। अपना कमाया हुआ अपार धन और भारी मात्रा में हथियार लेकर वो देश कार्य के लिए चले थे और अपनी यात्रा के दौरान वो घोषित करते चलते थे कि वो लोग आजादी की लड़ाई के लिए भारत जा रहे हैं। परिणाम ये होता कि सारी सूचना ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसे ही लोगों में से थे करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, पृथ्वी सिंह, राम रखा आदि। इन लोगों ने रास बिहारी बोस की बहुत ख्याति सुन रखी थी, इसलिए इन्होंने रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया था ताकि विप्लव की योजनाओं को उनका नेतृत्व मिल सके। इस आमंत्रण पर पहले शचीन्द्रनाथ सान्याल ने पंजाब के इन क्रांतिकारियों से भेंट की और रास बिहारी बोस को बताया कि पंजाब के क्रांतिकारियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, बस उन्हें सही नेतृत्व की आवश्यकता है। इस तरह रास बिहारी बोस बनारस से पंजाब जाने की योजना बनाने लगे। बनारस में उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था। शचीन्द्रनाथ पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी। इन सबके बावजूद शचीन्द्रनाथ रास बिहारी बोस को सुरक्षित रखते हुए क्रांति गतिविधि को आगे बढ़ाते रहे। पुलिस को चकमा देने में वो माहिर थे। रास बिहारी बोस ने बंगाल से बाघा जतिन को बुलवाया और शचीन्द्रनाथ को साथ लेकर विप्लव की योजना बना ली। शचीन्द्रनाथ ने बनारस के फौजी बैरकों में चक्कर लगा लगाकर फौजियों को क्रांति के लिए तैयार कर लिया। बाघा जतिन ने बंगाल में विप्लव की जिम्मेदारी ली और रास बिहारी बोस पंजाब पहुंच गए। कुछ समय वो अमृतसर में रहे, फिर लाहौर आ गए। विप्लव की तारीख 21 फरवरी 1915 तय हुई, लेकिन किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी और योजना विफल हो गई। धरपकड़ शुरू हो गई। रास बिहारी बोस चतुराई से बनारस लौट आए। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद प्रताप सिंह के साथ दिल्ली में दल के पुनर्गठन का प्रयत्न किया, फिर बंगाल पहुंचे। इस तरह वो लगातार सक्रिय रहे। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने बहुत आग्रह करके रास बिहारी बोस को जापान भेज दिया और तय किया कि कुछ समय बाद वो भी जापान चले जाएंगे। इसी बीच दल के एक साथी ने विश्वासघात किया और वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें आजन्म काला पानी की सजा सुना दी गई। भारत की स्वाधीनता का स्वप्न आंखों में था और उनका जहाज अंडमान की ओर बढ़ रहा था।

चार दिन और तीन रात जहाज लगातार चलता रहा और 18 अगस्त सन 1916 को शचीन्द्रनाथ सान्याल कालापानी जा पहुंचे। यहां हत्या जैसे अपराध का दंड भोग रहे कैदी भी थे, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था क्रांतिकारी बंदियों को। शचीन्द्रनाथ से पहले ही यहां माणिकतल्ला बमकांड में वारिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र दास और उपेंद्र पहुंच चुके थे। जेल में एक छोटा सा छापाखाना भी था, जिसके संचालन का काम वारिंद्र कुमार घोष को दे दिया गया था। इसी छापेखाने में हेमचंद्र दास, उपेंद्र और शचीन्द्रनाथ को भी लगा दिया गया। शचीन्द्रनाथ का झगड़ा अक्सर जेल अधिकारियों के साथ हो जाया करता था, परिणाम स्वरूप उन्हें कठिन दंड भी सहना पड़ता था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जेलों से कुछ कैदी रिहा किए गए। इसी क्रम में शचीन्द्रनाथ सान्याल भी 4 साल कालापानी की सजा काटने के बाद रिहा हुए। कालापानी से छूटने के बाद शचीन्द्रनाथ सान्याल कलकत्ता पहुंचे और वहां से बनारस आए। इसी बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। आजीविका हेतु जमशेदपुर में काम भी उन्होंने किया, लेकिन क्रांति कार्य से वो कभी विलग नहीं रह सके। अब इलाहाबाद पहुंचकर वो क्रांति दल का पुनर्गठन करने लगे। यहीं राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से उनका परिचय हुआ। भगत सिंह से उनकी गहरी आत्मीयता थी। उत्तर भारत में उन्होंने क्रांति संगठन की लगभग 23 शाखाएं स्थापित की। इस नए संगठन का नाम द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस संगठन के 5 विभाग थे, जो प्रचार, भर्ती, धन संग्रह, शस्त्र संग्रह और विदेशों में क्रांति का प्रसार जैसे कार्य किया करते थे। इन गतिविधियों के कारण उन पर पुलिस की कड़ी नजर थी। शचीन्द्रनाथ स्थिति को देखते हुए हमेशा के लिए फरार हो जाना चाहते थे, इसलिए पत्नी और 2 बच्चों को लेकर वो चंद्रनगर से कलकत्ता आ गए और संगठन को दृढ़ करने लगे। उन्होंने द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे छपवाकर उन्होंने भारत के बड़े शहरों में बंटवाया, जिसकी कुछ प्रतियां विदेशों में भी गईं। फलस्वरूप सन 1925 में उन्हें फिर गिरफ्तार करके 2 वर्ष के कठिन कारावास का दंड सुनाया गया। इसी बीच उनका नाम काकोरी कांड में भी जोड़ा गया और दूसरी बार आजन्म कालापानी की सजा देकर उन्हें अंडमान भेज दिया गया। आगे चलकर द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के रूप में विकसित किया था। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने दूसरी बार लगभग 10 वर्ष कालापानी का कठिन जीवन जिया। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटिश सत्ता के सामने जब ये शर्त रखी गई कि सभी राजबंदियों को मुक्त कर दिया जाए, तब सन 1936 में शचीन्द्रनाथ सान्याल भी कालकोठरी से मुक्त कर दिए गए। कालापानी की कठिन परिस्थितियों को जीते हुए उन्हें क्षय रोग हो गया था। भारत में उन्हें भवाली के स्वास्थ्य गृह में रखा गया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। भवाली से वो गोरखपुर आए और यहीं क्षय रोग से लड़ते हुए 7 फरवरी सन 1945 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश की आजादी से मात्र 2 साल पहले अपना जीवन भारत माता के चरणों में अर्पित कर वो विदा हो गए। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल.

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूँ, कभी उतार देता हूँ। बस यही पेश कर रहा हूँ। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूँ वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

हटूंगा वही, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुत्री को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर. इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें.

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें.

जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

ले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, आईने के सामने खड़े होकर हम खुद को कितनी देर तक निहारते हैं. अपनी चमकती त्वचा, अपने काले बाल और अपनी इस जवानी पर हमें कितना गुमान होता है. हमें लगता है कि यह खूबसूरती, यह ताकत और यह जोश हमेशा हमारे साथ रहेगा. हम इसी जोबन के नशे में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन कबीर साहब आज प्रकृति के एक सुंदर लेकिन कड़वे सच के साथ हमारे सामने खड़े हैं. वे हमें पलाश के उस पेड़ की याद दिला रहे हैं जो वसंत में तो आग की तरह दहकता है, पर फिर उसका क्या हश होता है. आइए जानते हैं इस चार दिन की चांदनी का असली चेहरा. कबीर कहा गर्बियो इस जोबन की आस, टेसू फुले दिवस चारी खंकर भये पलास.

0: साधो कंकर भये पलास। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो इस जोबन की आस। हे इंसान, तू अपनी इस जवानी पर, इस देह के आकर्षण पर इतना गर्व क्यों करता है? तुझे इस अस्थाई सुंदरता से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इसे समझाने के लिए कबीर एक बेमिसाल देते हैं। टेसु फूले दिवस चारी, पलाश अर्थात टेसु। टेसु का पेड़ जब फूलता है तो पूरा जंगल उसके केसरी रंगों से दहक उठता है। लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। लेकिन वह रौनक कितनी देर रहती हैं? सिर्फ दिवस चारी यानी कुछ ही दिनों के लिए, और उसके बाद खंकर भये पलास। वही शानदार दिखने वाला पेड़ सूख कर एक ठूंठ, एक खंखर बन जाता है। उसके सारे फूल झड़ जाते हैं, सारा रंग उजड़ जाता है। दोस्तों, कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि हमारी जवानी भी पलाश के फूल की तरह है। आज खिल रही हैं, कल मुरझा जाएगी। जिस शरीर पर हम इतना इत्र छिड़कते हैं, जिसे हम इतना सजाते हैं, वह एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। फिर इस पर अहंकार कैसा? आज का चिंतन। मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए, क्या हमारे पास देह की सुंदरता के अलावा भी कुछ सुंदर है? हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, क्या इनमें कोई खुशबू है? शरीर तो बूढ़ा होगा ही, यह प्रकृति का नियम है। पलाश के फूल तो झड़ेंगे ही, लेकिन अगर आपके भीतर राम नाम का रंग चढ़ा है तो वह कभी फीका नहीं पड़ेगा। आज अपनी बाहरी चमक थमक से थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी आत्मा के सौंदर्य पर काम कीजिए। ऐसी सुंदरता कमाइए जो खंकर होने के बाद भी फीकी ना पड़े। याद रखिए, असली चमक चेहरे पर नहीं, चरित्र में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चच्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू। सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।
3: श्रोतेहो, प्रसारणात यानंतर आपण ऐकणार आहोत कार्यक्रम वतन का राग। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाळ यांच्या सहकार्याने आम्ही हा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत। ऐकूयात कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल का। ये वतन का राग। यूं तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दबा दिया था, लेकिन भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने आने वाली पीढ़ी के कुछ क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास जरूर जमा दिया था कि सशस्त्र क्रांति से ही भारत की स्वाधीनता संभव है। इसलिए दूसरे स्वतंत्रता संग्राम को खड़ा करने के उद्देश्य से अनेक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए और इसकी विधिवत तैयारी की गई। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने गदर पार्टी के रूप में इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम किया, तो देश के भीतर बंगाल से पंजाब तक के क्रांतिकारी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। देश के भीतर इस उद्देश्य से जुटे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने देश के साथ साथ विदेश में रहते हुए भी भारत की स्वाधीनता हेतु आजीवन प्रयास किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्हीं रास बिहारी बोस के अत्यंत विश्वस्त साथी थे महान क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल। शचीन्द्रनाथ सान्याल का जन्म सन 1893 को बनारस में हुआ था। उनके पिता हरिनाथ सान्याल अपने सभी पुत्रों को बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यही कारण है कि शचीन्द्रनाथ के बड़े भाई रविन्द्रनाथ सान्याल बनारस षड्यंत्र केस में नजरबंद रहे। छोटे भाई भूपेंद्रनाथ को काकोरी कांड में 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई, तो तीसरे भाई जितेंद्रनाथ भी लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह आदि के साथ अभियुक्त थे। दरअसल सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटिश सत्ता के विरोध में उठी लहर ने उस समय के बच्चों और नौजवानों को अत्यधिक प्रेरित किया था। शचीन्द्रनाथ और उनके पूरे परिवार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। यही कारण है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल ने काशी में मात्र 15 वर्ष की उम्र में सन 1908 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये संगठन बंगाल के क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। इस समिति का प्रारंभिक स्वरूप व्यायामशाला का था, लेकिन असल में ये नवयुवकों का राष्ट्रवादी संगठन था। ये वो समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा देश गरज उठा था। उधर तिलक जी ने पुरजोर आह्वान कर दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज का नारा जन जन का नारा बन गया था और भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्वाधीनता और स्वराज की प्रबल मांग गूंज उठी थी।

सचिंद्रनाथ के मन में देश की स्वाधीनता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती होती जा रही थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने बंगाल की यात्रा की। अनेक क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ, लेकिन जब रास बिहारी बोस से उनकी भेंट हुई तो जैसे उनकी तलाश पूरी हो गई। इस तरह वो रास बिहारी बोस के अनन्य सहयोगी के रूप में आगे बढ़े। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में सचिंद्रनाथ भी रास बिहारी बोस के साथ थे। दोनों ने साथ मिलकर संगठन के विस्तार का बीड़ा उठाया था और इसके विस्तार के लिए राजस्थान तक पहुंचे। राजस्थान में पहले से ही एक राष्ट्रवादी संगठन काम कर रहा था, जिसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खड़ा किया था, और तब वे लंदन में रहकर क्रांति गतिविधियों को विस्तार दे रहे थे। राजस्थान में उस समय अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद राव, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट जैसे अनेक क्रांतिकारी सक्रिय थे। सचिंद्रनाथ ने उन्हें साथ लेकर राजस्थान में संगठन विस्तार के साथ साथ दिल्ली में भी संगठन के विस्तार का कार्य किया। पंजाब के क्रांतिकारियों में गदर पार्टी के लोग अधिक थे। दरअसल गदर पार्टी के हजारों सदस्य जत्थों में अमेरिका और कनाडा से भारत पहुंचे थे। अपना कमाया हुआ अपार धन और भारी मात्रा में हथियार लेकर वो देश कार्य के लिए चले थे, और अपनी यात्रा के दौरान वो घोषित करते चलते थे कि वो लोग आजादी की लड़ाई के लिए भारत जा रहे हैं। परिणाम ये होता कि सारी सूचना ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसे ही लोगों में से थे करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, पृथ्वी सिंह, राम रखा आदि। इन लोगों ने रास बिहारी बोस की बहुत ख्याति सुन रखी थी, इसलिए इन्होंने रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया था ताकि विप्लव की योजनाओं को उनका नेतृत्व मिल सके। इस आमंत्रण पर पहले सचिंद्रनाथ सान्याल ने पंजाब के इन क्रांतिकारियों से भेंट की और रास बिहारी बोस को बताया कि पंजाब के क्रांतिकारियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, बस उन्हें सही नेतृत्व की आवश्यकता है। इस तरह रास बिहारी बोस बनारस से पंजाब जाने की योजना बनाने लगे। बनारस में उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था। सचिंद्रनाथ पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी। इन सबके बावजूद सचिंद्रनाथ रास बिहारी बोस को सुरक्षित रखते हुए क्रांति गतिविधि को आगे बढ़ाते रहे। पुलिस को चकमा देने में वो माहिर थे। रास बिहारी बोस ने बंगाल से बाघा जतिन को बुलवाया और सचिंद्रनाथ को साथ लेकर विप्लव की योजना बना ली। सचिंद्रनाथ ने बनारस के फौजी बैरकों में चक्कर लगा लगाकर फौजियों को क्रांति के लिए तैयार कर लिया। बाघा जतिन ने बंगाल में विप्लव की जिम्मेदारी ली और रास बिहारी बोस पंजाब पहुंच गए। कुछ समय वो अमृतसर में रहे, फिर लाहौर आ गए। विप्लव की तारीख 21 फरवरी 1915 तय हुई, लेकिन किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी और योजना विफल हो गई। धरपकड़ शुरू हो गई। रास बिहारी बोस चतुराई से बनारस लौट आए। सचिंद्रनाथ सान्याल ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद प्रताप सिंह के साथ दिल्ली में दल के पुनर्गठन का प्रयत्न किया, फिर बंगाल पहुंचे। इस तरह वो लगातार सक्रिय रहे। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने बहुत आग्रह करके रास बिहारी बोस को जापान भेज दिया और तय किया कि कुछ समय बाद वो भी जापान चले जाएंगे। इसी बीच दल के एक साथी ने विश्वासघात किया और वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें आजन्म काला पानी की सजा सुना दी गई। भारत की स्वाधीनता का स्वप्न आंखों में था और उनका जहाज अंडमान की ओर बढ़ रहा था।

चार दिन और तीन रात जहाज लगातार चलता रहा और 18 अगस्त सन 1916 को शचीन्द्रनाथ सान्याल कालापानी जा पहुंचे। यहां हत्या जैसे अपराध का दंड भोग रहे कैदी भी थे, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था क्रांतिकारी बंदियों को। शचीन्द्रनाथ से पहले ही यहां माणिकतल्ला बमकांड में वारिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र दास और उपेंद्र पहुंच चुके थे। जेल में एक छोटा सा छापाखाना भी था, जिसके संचालन का काम वारिंद्र कुमार घोष को दे दिया गया था। इसी छापेखाने में हेमचंद्र दास, उपेंद्र और शचीन्द्रनाथ को भी लगा दिया गया। शचीन्द्रनाथ का झगड़ा अक्सर जेल अधिकारियों के साथ हो जाया करता था, परिणाम स्वरूप उन्हें कठिन दंड भी सहना पड़ता था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जेलों से कुछ कैदी रिहा किए गए। इसी क्रम में शचीन्द्रनाथ सान्याल भी 4 साल कालापानी की सजा काटने के बाद रिहा हुए। कालापानी से छूटने के बाद शचीन्द्रनाथ सान्याल कलकत्ता पहुंचे और वहां से बनारस आए। इसी बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। आजीविका हेतु जमशेदपुर में काम भी उन्होंने किया, लेकिन क्रांति कार्य से वो कभी विलग नहीं रह सके। अब इलाहाबाद पहुंचकर वो क्रांति दल का पुनर्गठन करने लगे। यहीं राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से उनका परिचय हुआ। भगत सिंह से उनकी गहरी आत्मीयता थी। उत्तर भारत में उन्होंने क्रांति संगठन की लगभग 23 शाखाएं स्थापित की। इस नए संगठन का नाम द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस संगठन के 5 विभाग थे, जो प्रचार, भर्ती, धन संग्रह, शस्त्र संग्रह और विदेशों में क्रांति का प्रसार जैसे कार्य किया करते थे। इन गतिविधियों के कारण उन पर पुलिस की कड़ी नजर थी। शचीन्द्रनाथ स्थिति को देखते हुए हमेशा के लिए फरार हो जाना चाहते थे, इसलिए पत्नी और 2 बच्चों को लेकर वो चंद्रनगर से कलकत्ता आ गए और संगठन को दृढ़ करने लगे। उन्होंने द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे छपवाकर उन्होंने भारत के बड़े शहरों में बंटवाया, जिसकी कुछ प्रतियां विदेशों में भी गईं। फलस्वरूप सन 1925 में उन्हें फिर गिरफ्तार करके 2 वर्ष के कठिन कारावास का दंड सुनाया गया। इसी बीच उनका नाम काकोरी कांड में भी जोड़ा गया और दूसरी बार आजन्म कालापानी की सजा देकर उन्हें अंडमान भेज दिया गया। आगे चलकर द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ही सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के रूप में विकसित किया था। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने दूसरी बार लगभग 10 वर्ष कालापानी का कठिन जीवन जिया। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटिश सत्ता के सामने जब ये शर्त रखी गई कि सभी राजबंदियों को मुक्त कर दिया जाए, तब सन 1936 में शचीन्द्रनाथ सान्याल भी कालकोठरी से मुक्त कर दिए गए। कालापानी की कठिन परिस्थितियों को जीते हुए उन्हें क्षय रोग हो गया था। भारत में उन्हें भवाली के स्वास्थ्य गृह में रखा गया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। भवाली से वो गोरखपुर आए और यहीं क्षय रोग से लड़ते हुए 7 फरवरी सन 1945 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश की आजादी से मात्र 2 साल पहले अपना जीवन भारत माता के चरणों में अर्पित कर वो विदा हो गए। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

0: फोन चलाई, अंदर से आवाज आई।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: की एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा, जा, जा।

0: है ये बेअदब कनीज हो।
1: बेअदब जरूर है लेकिन शेर अच्छा कहा है। खातून आगे आओ। माँ बदौलत ने अब तक सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत शेर सुना है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कौन हो तुम?
0: आपकी कनीस अर्जुमन बानो।
1: अर्जुमन बानो? आसिफ खान की साहिबजादी, मिर्जा खयास की पोती। सुभान अल्लाह, ई खाना हम आफ्तावत। हमने तो समझा था इस बहरे हुसन का सबसे चमकदार मोती हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे दुरे नायाब मौजूद है। अर्जुमन, तुमने एक शेर पढ़कर हमारी आतिश शौक को भड़का दिया है, हम पूरी गजल सुनना चाहते हैं। बैठ जाओ।
0: क्यों हुक्म आली जाए।

0: ओहो, ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

0: शायद तू क्या कर रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरी। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो
1: देखो दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।